0: प्लास तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चुनने बाबा नाम दिया स्टीन नो अच्छी फनूर को लोगों फने लेता नो खुश नहीं तू तू मैं की खुश ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना ये कोरोना चीन नंबर लानी है किस में चीन आफ़ाता नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर तुम तो ना कुछ फन रहता ना फन नहीं सी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सानिया चाज लाव डाली पिसू आ फिर ना काफी ना जान तो ना वो ना मुझे अंचे रापा फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सर ना मुझे फिर नी ने चीज लुकु सा तम थी फन न्यू ना फुट वो गाचे चना नो पिसू कुछ अलू तम थी
1: रांते ओमने रेलु जान्दे उतने चीज ना फनार्ट जान कुसावा जात सावा काम फंडाइक सावा काम उतने सावा का ना फनेतर ना जान सावा का ना ताऊ वो तो ये सावा काम फब क्यूस कुस ना जान चीज बिजू फादेमन जाना का वाचानिया उतने फादेमन जाना का वाचानिया जान जो दे नी उतने सावा काम सार का ना वो तो ये फिना का फिना Bulanjur corona virus semua, cawak kamu fandai tanah na cawak kamu fandai, cawak kamu fam manu bisu zane.
3: Ah, fandom nerabam ten futsan ka. Ah, ah aku kalau minta nak ngamle, fani nafas selama, kita nafas selama. Ah,
4: tapi rabat sudah putus di fandom tu nakir, manu tu natanah na zane. Ah, mau cuci kesianu jo. Saya buat sendiri. Kerak ni sama misalnya nanti si siapa kau fanur ka pas sistem yang kau fandu nata nana buat sendiri saya.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.